तुद्यापि भावै सोई वरतै जी तू आपे करें सोई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक

को आसंगरिए पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें तो शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सेख हमारे तारिये चुन चुन सतर हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लेहो मोय राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कण को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पढ़ पढ़ की जाने जाबुद करख करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा जाबया करख करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत देह तार सब हूं जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरे आलम

केह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहु रच दीनी, कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमड़ प्यो शंकरी कैठा, सगरी सृष्टि दिखाया चंबव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तो तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत वै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकटने हैं, रच्छा हुए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहार हो, ताके ताप तनक मोहार हो, रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सकै ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोखते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उबारी, सर्ब ठौर महो सहाई, दुष्ट दोखते लिहु बचाई सवैया, पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मातेक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बौपेद, कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तुए बखान्यो दुरा, सगल द्वार को छाड़ के

मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो। मेरे मन हर गुण हरे उच्चरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो। रहाओ काया नगर महराम रासि उत्तम, क्यों पाइए उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिले अमृत हर रस पियो।

अमृत दे बाटे, पर पर अमृत दे बाटे, हर सिख नु आखे लैला वावा संता दे संता जरनैला जरनैला बावा।

चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हो सतगुरां की पावन हजूरी विच शामा वेले दे सज्जे दवाना दियां हाजरियां परदियां मुबारक बाणी दे नाल आप साध संगत जी ओ सांझ बना रहे हो। सतगुरु गुरु रामदास साहब जी का बिलावल राग विच आप जी ने बचन सरवण किया है तो सतगुरु महाराज ने बख्शिश की है। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो। संगत विच बैठ के साड़ी सुरत साड़ी सोच का प्रभाव जिहड़ा है वो पॉजिटिव हुंदा है, चंगेरा हुंदा है। तो महाराज कहिंदे ने मेरे मन चंगी संगत विच बह के उस वाहिगुरु दे रब दे जिहड़े वर्च्यू ने जिहड़े गुण ने उन्हां नूं गाया कर, इहदे नाल मत्थे की तकदीर बदलती है। तो मत्थे दे भागां नूं बदलाउण लई महाराज कहिंदे ने संगत करनी बड़ी जरूरी है। तो आ वडभागी हो इसे तरह हाजरियां भरिया करो। इत्थे हुण समाप्ति है सतगुरु की पावन बाणी सोहिला साहब दे जाप होणगे, नाल महाराज दे पावन सरूपां की सेवा होवेगी जी। वाहिगुरु जी सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरता किया कर तेका होए विचारो, तित कर गावो सोहिला शिवर सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हो वारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाउ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरा दाने कीमत न पवे तिस्ता ते कमण शुमार। संभ साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देव सजन सीसड़िया ज्यो होवे साहिब सुमेल कर करे हु पहुंचा। सतड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया, नानक से देवान रागासा मैला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सोका राख वड़ाई तुए रहाउ। विश्व चसिया घड़िया पैरा, थित्ती वारी मां हुआ सूरज को रुत अनेक। नानक करते के केते वेस, राग तनासरी मैला पहला। गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बनराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नैन है तोहि को, सहस मूर्त नना एक तोहि। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गांधी चलत मोही। सब मैं जो जोत है सोए, तिस तह चानन सब मैं चान होए। गुरु साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरांत, लोभ तमनो अण दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारं कौ, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बौ भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लि मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डौत पुन वड्डा हे, रहाओ साकत हर साध ना जाणिया। तिने अंतर होमे कंडा हे, ज्यो ज्यो चलै चुबै दुख पावै। जमकाल सहस डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे। हर राख राख उड़ वड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेकर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी मैला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत जहल की बेड़ा, इहां खाड़ चलो हर लाहा। कै बसन सुहेला औद कटै दिन सरनारे, मन गुरमिल का सवारे। रहाओ संसार बिकार, संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावै ए रस कथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मनै बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे, बौर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास सुख मांगे, मुख कर संतन की तूरे।

सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एकिया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सवचार। पैरो माला पंजवा लेपना लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हरजन राखे पार ब्रह्मे आप, पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ। अपना खसम जन आप ते आया, ए आना पापी ओ आप पचाया। प्रभ मात पिता अपने दास कर खवाला, निंदक का माथा इहां उहां काला। जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेश पापी पचिया पया निरास। पैरो माला पंजवा खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम, झूठ झूठ झूठ झूठ तुनी गुमान रहाओ।

Pero mal la penma Satgur Sev Saram Falapai Janam Janam Ki Madam Batai Patit Pavan Prabh Tero Nao Purb Karam Likhe Gunagao Rao Sadhu Sangho Hovai Udhar Shubha Pavai Prabh Ke Dwar Sarb Kalyan Charan Prabh Seva Tur Banchen Sab Sur Nar Deva Nanak Paya Nam Nidhan Har Jap Jap Udriya Sakal Jahan Pairo Mahala Panjwa Apne Das Ko Kanth Lagave Nindak Ko Agan Mein Paave पापी तेरा खे नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप कमायण रहाओ दास राम ज्यों लागी प्रीत निंद की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया दुखी अपना कीता पाया आए ना जाई रे आसमाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरो महला पंजवा चौपदे कर दूजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद श्री तार मोहन सगले उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभु छोड़ करें अन सेवा कवन बिखिया रस माता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चितवी है तित बिगर सकाज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरें मनमुख आंधी गयाना हर की भगत करें तन निंदें निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन तन सब प्रभ का सागत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पवजल फेरा होम जग जप तप सब संजम ताट तीर्थ नहीं पाया मिटाया पै शरणाई गुरमुख नानक जगत तराया पैरों महला पंजवां

वर्तनेमतीर्थाय संतसांगोपेक्षो मनमाय उपयाल सर्वमय पूर्ण रासमंगल गुणगाय रहा जोगपेक्ष संन्यासपेक्षो जात जंगम का पड़ाए तपी तपी शरमन में पेक्षो नाट नाटक नृताय चौ में पेखियो खाट में पेखियो दास अष्टि सिमरताए सब मेले को एक वखाने तो तस्ते कहाँ दुराए अगाह अगाह बेअंत स्वामी ने कीम कीम कीम आए जन नानक तन के बाल बल जाइए जे काट प्रगटी आए पैरो महला पंजमा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बेख संचय नित डरता फिरे है निकट अर भेद ना पाया बिन सतगुर सम्मोही माया नेड़े नेड़े सब को कहे गुरमुख भेद विरला को लह रहाओ निकट ना देखे पार करे जाए तरब हिरे मिथिया कर खाए पैठ गौरी हर संग ना जाने आ बाज गुरु है परम पुलाने आ निकट ना जाने भोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड अंतर वस्त दिसंतर जाए बाज गुरु है परम पुलाए जिस मस्तक

स्वभाव, नाम न विसरै संत प्रसाद, नाम लैत अनहर पूरे नाद। प्रभु कृपा ते नाम नौ निरपाई, गुर कृपा ते नाम सो बनियाई। धनवंते सही प्रदान, नानक जाकै नाम नितान। भैरो महला पंजवा, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जीव प्राण सुखदाता। तू मेरा ठाकर, हूँ दास तेरा, तुझ बिन अब नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभु दात, तुमरी औसत करो दिन रात रहा। हम तेरे जनता तू बुझा बनहारा, हम तेरे भिखारी दान देहे दातारा। तो प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर तुम्हें समाने। तुमरी कृपा ते जपिए नाव, साध संग तुमरे गुण गाव।

कुदरत साजे करा संद ठो जाओ दाता करता तू तुस देव है करे बसाओ तू जाने सब सिद्ध लै सहज कवाओ।

शरण जो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई।

दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सजन सच्चा पातशाह सिर साहद जिस पास बैठे आ सोही है।

पूरने पायो नहीं, लोकां दे पुत मरवाउणे नहीं, मैनूं लोड़ पई मैं अपने चारे पुत्तर इस धर्म युद्ध दे विच इन्हां नूं निशावर कर देंगा। और करके गए, पिता वारता मां वारती। और अपने आप गुरु प्यारियो एक अंतम समा इदां दा वी आउंदा है कि इस भारत की धरती लई गुरु महाराज अपना भी पवित्र खून डोल देंदे ने जदों खंजर वजदा उन्हां दे पेट दे विच। सो ऐसे महाबली गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे औलाद उन्हां दे सिख होण दे उत्ते आपां फकर करिए। हुण गुरु प्यारियो इदां दा इतिहास आ जांदा है भी गुरु के सिख कई बार गुरु तो भी अगे लंघ जांदे आ, गुरु दे सिख गुरु तो अगे लंघ जांदे आ। किवें? जे गुरु ने पूरने पाए तत्तियां तवियां दे उत्ते सण दे ते गुरु दे सिखां ने भी देगां विच उबाले खाधे आ। हुण गुरु के सिख अपने आप नूं आरे दे नाल चरवा लैंदे आ धर्म नूं जिउंदा रखण वास्ते। उह सणे केसां दे खोपर उतार जांदे आ ते दस दस के बंद कटवा जांदे आ। 92 साल दी उम्र च मान नहीं होना चाहीदा गुरु प्यारियो, फकर नहीं होना चाहीदा। फकर है सानू अपनी कौम दे उत्ते। ते सतसंग जी जिथे कौम नूं लोड़ पई आ ना, साडे गुरधामां वल किसी ने कैरी अक कीती है ते साडे गुरु के सूरमिया ने उहदे वी सोधा लाया। हुण अपने सामने अपना ते जिहड़ा समकाली समा है ना, आपां कहिंदे भी हो पता नहीं ये कहानियां होणगियां जां इह सच होवेगा जां इह ना होवेगा, पर साडा ते समकाली समा जिहड़ा उह इंदिरा गांधी वाला सी ना 1984 दे विच, किद्दां कोई कह सकदा नहीं गुरता मालीए कौम नहीं मर मिटदी। मर मिटदी है अपने गुरधामां ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन इस इज्जत नूं बरकरार रखण वास्ते, अणक नूं बरकरार रखण वास्ते गुरु का सिख अपने आप नूं हर अग दे विच झुकण वास्ते तैयार हुंदा है। 1984 विच इंदिरा गांधी ने साडे दरबार साहिब की बेअदबी कीती है, अकाल तख्त साहिब नूं ढाया ते गुरु के सिंह दिल्ली दे विच भाई बेअंत सिंह भाई सतवंत सिंह अपनी अणख नूं जिउंदा रखण वास्ते इस पापण दे कोलों बदला लैंदे आ। ते जरनल वैद्या इहदा वड्डा जरनैल उहदा भी सोधा लाया जांदा सुखा जी ते भाई जिंदा जी। गुरु प्यारियो ऐसे सूरमे किते साडी कौम दे दिल चों निकल सकदे आ नहीं। ते हुण इदां दा इतिहास है, किसे ने जा के दस दिता है ओ गुरु प्यारियो मालवे दी धरती दे उत्ते तलवंडी साबू विखे है। ये 1675 ईस्वी की गल है, माफ करना यह 11 नवंबर 1757, सॉरी कई बार सो 1757 की गल है। एक कौम का बुढ़ा जरनैल बाबा दीप सिंह उस वेले मालवे की धरती भाग ला रहा है। हुण सतसंग जी जंगा उन्हें भी लड़िया, बाबा दीप सिंह ने पहला भी आज इस जंग का जिक्र कर रहे हैं, उदू पहला भी जंगा लड़िया कलगिया वाले पातशाह दे नाल, जिथे जिथे जंगा की जरूरत पई उथे जंगा लड़िया। पर जदों आनंदपुर साहब की वड्डी जंग हुई है ना, तो सुभाविक बाबा दीप सिंह जी अपने नगर पऊ विंड विखे आ चुके सन, अचानक आए हुए सन। पर उस तो बाद ऐसा समा बनिया दुश्मन ने घेरा पा लिया, जेडे अंदर घर गए वह अंदर घर गए आनंदपुर के, ते जेडे बाहर पिंडां विच चले गए उन्हां नूं पिंडां दे पिंडां चो अंदर आनंदपुर जाण दे समा ना मिलिया। आनंदपुर की जंग तो बाद कलगिया वाले पातशाह चमकौर जाते ने, पुत्र शहीद होंदे ने, दो पुत्र सहंद दीआं दीवारां दे विच चिण दित्ते जांदे ने, माता शहीद कर दित्ते जांदे ने, जाना तो प्यारे सिंघ शहीद हो जांदे ने, पंजां प्यारिआं दे विचों तिन प्यारे भी शहीद हो जांदे ने, ते ओह मालवे दी धरती ते आखर गुरु कलगिआं वाला पातशाह हले अपनी अणख नूं इन्हां सिखां दे दिलां दे विच भरन वास्ते हजे ओह जिउंदा कौम कौम का वह मालिक वह कौम का सरदार कलगिया वाला पातशाह हजे जिंदा ते तलवंडी साबो विखे भाग लाते हैं। हुण उत्थे बाबा दीप सिंह जी जदों पहुंचते हैं ना, तो बड़े वैराग दे विच जिथे पुत्रां दी गल कीती है माता जी की गल कीती है, और उत्थे बाबा दीप सिंह बड़े वैराग विच कहिंदे कलगिया वालिया पातशाह मैथों की भुल हो गई है। ते पातशाह कहिंदे दीप सिंह जी इदां क्यों बोलदे हो, तुसीं तुहाडे कोल कहिड़ी भुल होणी, तुसीं चढ़दी कला दे सिंह हो। हाँ ठीक है, अचानक तुसीं अपने पिंड गए हुए सी ते आनंदपुर दे विच तुसीं कुरबानी साडा साथ नहीं दे सकदे, पर सानू कोई गिला थोड़ा तुहाडे उत्ते समय बन जाणे आ, इदां दी कहिड़ी गल। कहिंदा नहीं पातशाह, मेरे जिन्ने मेरे नाल दे सिंह सन तकरीबन मेरे नाल दे जिन्ने तुहाडियां फौजां विच भर्ती

सुखन पावै, फिर फिर जोनी पाहे, हर हार कंट जिन पैरिया, गुरु चरणी चितड़ाए, तिन्ना पिछे रिद सिद्ध फिरे, उन्ना तिलना तुम्बाए, जो प्रपावे सो थिए, अब न करना जाए, जन नानक दीपे नाम लै, हर देवु सहस पाए, श्री डाक महला तीजा कर पहला, जिस ही की सरकार है, तिस ही का सब कोय, गुरमुख कारक पावनी सच कर प्रगट होय, अंत जिसके सच वसै, सचे सची सोए, सच मिलै, थे न बिछड़ै, तिन निज कर वसा होय, मेरे मन, मन राम नाम, मन राम में हरफ नब न कोय, सतगुर सच प्रभ निर्भला, शर्म लावा होय रहा, शब्द मिले सो मिल रहे, जिसनु आपे लय मिलाए, दूजे पाए को न मिले, फिर आवे जो सब एक वरताए, कुरिया समाए, जिसनु आप त्याल होए सो गुरमुख ना समाए, पाड़ पाड़ पंडित जूत की बात करे विचार, मत बुद्ध भवी नब चई, अंतलो विकार, लाख चौरासी ही भरम दे, परम्परा हो एक बार, पूर्व लिखिया कमाना कोई मिटन हार, सतगुरु सेवा गाकड़ी सदी जे आपका शब्द मिले, ता हर मिले सेवा पै सबता, पारस परसे पास होए, ज्योति ज्योतमा, जिनको फूल लिखिया तिन सक मिले आए, मन भुखा भुखा मत करे, मतू करे पुकार, लाख चौरासी ही जन श्री सत दे त्यार, नरपुस्ता दयाला सुभना करदा सार, नानक गुरमुख बुझिए पाइए मुक्त पार, श्री डाक महला तीजा, जिनी सुन के मनिया तिन निकर वास, गुरमत गुरमती सलाए, सच हर पाया गुणता, सच रते से नमलै, हो सच बलहारे चास, हृदय जिन के हर वसै, तत घट है प्रगाज, मेरे मन हर हर निमल त्याय, तुर मस्तक जिन को लिखिया से, गुरमुख रेल बलाए, रहाओ हर संतो देखो निकार, निकट से भरपूर, गुरमत जिनी पछाणिया से, देखे सता जूर, जिन गुण तिन सद मन सह, औगुणवंत अदूर, मनुख गुण ते बारे, पिन नाफे मरदे झूर, जिन शब्द गुरु मनिया,

फिर होए ए जन पदार्थ पा के हर नाम चे तिर विलाय पग खिसे रहना नहीं केठो नठा उबे लहत ने आप अगे गया फिताए जिस न करे सो उपर हसे तिर विलाय देखा देखी सब करे मन मुख भूजन पाए जिन्ना गुरमुख हिरदासत है सेब पई तनताए हर गुण कावे हर नित पड़े

अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए का डिठो विस्तार सहजे सवती रत्या भुजर उतरे पार तीर्थ वर्त लख संजमा

रसना सच्चा सिमरिया मन तन मन होय मार पिता साख अकले तस पिन न कोय मेहर करे जे अपनी चसा न बिसरे सोय मन मेरे सच्चा सेव जिचर सास तस बिन सब कूड़ है अंते हुए बिना सराव साहे मेरा निबड़ा तस बिन अवन न चाहे मेरे मन तन भुखत अगले कोई आन मिलाफे माए चारे कुंडा पालिया सहप न ना जाए तिस आखिर दास का जो सक मेरे करतार सतगुर दाता नाम का पूरा जस भंडार सदा सदा सलाही है अंतन पारा पार पार्वत गा सलाही है जसते चलत अनेक सदा सदा आराधी है यह मत विशेख है।

ना कोई। प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटे हर सोए, हर जेठ जुड़न दा लोड़िए जिस अगै सब निवान, हर सज्जन दावण लग्या किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सबे नारायण जेते मन पावन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करान।

जित दिन देह बिन शशी तित वेलै कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत।

0: संत आराधन सदा सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दत्तीन जिंद गुर शब्द अराधी है
1: जब ये निर्मल मंत कीमत कह न जाइए परमेश्वर बेअंत जसवान मसह नारायण सो कही है भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सब ही हंत दिन रैन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रपूर्णो मन न माणी थाओ हर ओट गही मन अंदरे जप जप जीमा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखै त्यों रहां तेरा दत्ता पहना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथै कूकण जाओ अज्ञान विनाशन तम हरण उचे अगम अमाओ मन बिछड़िया हर मिलिया नानक ए सवाओ सर्ब कल्याण तित दिन हर परसी गुर के पाओ श्लोक महला पहला वार माज की मलक मुरीद तथा चंद्रड़ा सोया की धुने गावनी एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुरप्रसाद श्लोक महला पहला

सो मल सजाए, रस कस टटर पाइए, तपै तै विरलाए, पीसो फोग संभालिए, दिच्चै अग जलाए। नानक मिठै पतरिए, वेखो लोका आए, पवड़ी इक ना मरन ना चित, आस घनेरिआ। मर मर जम्मै नित किसै ना कीरिआ, अपनड़ै मन चित्तो कहन चंगीरिआ, जम राजै नित नित मन मुखीरिआ। मनमुख लूण हराम क्या ना जानिया, बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिले मुख नाम साहिब भावसी, करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी। श्लोक महला पहला। मच्छी तारू क्या करे, पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास। कुत्ते चंदन लाइए, पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए, पढ़िए सिमरत पाठ।